अच्छा जटांग वाला दरत हुए कना नूर हालात सरेंगेरी मौसम सरेंगेरे वक्त सा झुंड सरेंगे रवान दे अल्लाह दिव किचे दग झुंड सा सुकुले अब मजेदार लश पश रवान हुए और बिल्कुल जितना सुधर मजूस सरमख है बस प्रोग्राम देशना को उसमें एक पाकिस्तान अमेज जिसंगता उस तो पदरा असलो कुलागानी राउडी असलो ब्यूटी राउडी

दिन इलावा पदी की चिकमदी लिकोरिक और मलबेरी शामिल लीजिए। लिकोरिक पता सुकतली विकना दासी उगदो उगदो भी शातु टाइप विकना और चिकम मलबेरी शातु तवाई सॉरी ची लिकोरिक चिकम देखना दलक दासी उगदो उगदो भी बखन वाला माने पबोक्तो की नू मेयर सोलो दुख शातु चिकम दे दा पदी डार्क स्पॉट्स ने दीजिए दा डार्क स्पॉट्स ये चिकम मग पानी दा कम तुरवा लेशान मौजूद भी या चिकम दे अक्सर दासी ले खोर्से भी गयो न्यूज़ के अगड़े जा तुरवा ले पागी के बेहतरीन किरदार अदा कीजिए। और बल चिकम दे सास उसकिन चिकम लाइट्स ने और ब्राइटनेस ने पाकी के बेहतरीन आवली सास उसकिन टोन चिकम दे अगर देर जात खैस तक कई देर जात बेहतरीन कई देर जात को ले कई दिन इलावा चिकम पदी के एलवेरा शामिल था नगा चिकम दे मदद वर के पा मोचुराइज के ला और चिकम द स्किन ब्राइटनिंग दे द स्किन चिकम स्पुरवा ले दे आगे की बेहतरीन आवली ये निदमख ना स्पुरवाले खत्म ही और चिकम दे मखले यो फेर लुक वर कई और यो गुड़वाले शान चिकम दे स्किन की एट की नुस्तान सुमख चिकम दे बे नॉर्मल शी अगर ड्राइनेस नरोजी चिकल मग डेर जात स्पूर वे युदा भी अगर वाला वाला खुशकी शानो की अगर पुटु नाले अगे न बस सासु चिकम 4-in-1 कंप्लीट गोली ब्यूटी क्रीम दे द IZNA प्रोडक्ट बाय टू ब्रदर्स अमंग द इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तो आगे के चिकम दा सलूर सीजन शामिल ले डेर जात बेहतरीन दी नेचुरल दी कुदरती दी द इंसान मेड द इंसान जोल ग्रेशवी ने दी दुतासु सरा ऑप्शन की चिकम दे दो किस्म ब्यूटी क्रीम दे ओसा उम्मीद है चिस्सा सुबह पे दग समझकार करे दिस सरा सरा सुबह चे हसाम लकम खब पूरी इन वन कंप्लीट गोल्ड ब्यूटी क्रीम सरा चिकम दे आ दग साबुन इस्तेमाल हो नमंग फार्मूला ब्यूटी क्रीम सरा सको नुगस्ता सुजन की दा क्वेश्चन नो गुड क्वेश्चन तो समंग द फार्मूला ब्यूटी क्रीम सरा द एलोवेरा फेस वॉश चिकम दे इस्तेमाल होले शी जिगर चिदागे कंबिनेशन चिकम दे एलोवेरा फेस वॉश द फार्मूला ब्यूटी क्रीम सरा डेर जात बेहतरीन दे डेर जात औसम दे डेर जात आउटस्टैंडिंग दे दुतु द आगे सर चिकम दे एलोवेरा फेस वॉश इस्तेमाल होले शी तब उस वॉश हसाम पदी पसाबुन की खसूसियात शामिल उन ददी पसाबुन की हम दगा खसूसियात चिकम दे शामिल ली चिकती कल इस्तेमाल की कल यूज की कल दशवन पे इस्तेमाल की रावली तादो अभी आप तो लगी शिवा की इस दाका उस पाकिस्तान किस बला का नाम है।

अच्छा जी तासरे मकड़े में जाना ना मोहब्बत है और जेरे जाता मैंने ने शुक्रिया नमक नेटवर्क तासो समस्लवी कॉल्स न दर्जी तासो कॉल्स न राजी बखना गवाल में पता न लगी नेटवर्क इसी शुकी दिलेशी।

आप जब बोलते हैं कि वानने वाले टांग वाले राविशे, तो मेरे बहन कल कह रही थी कि असम भाई ने बोला कि राविशे, असम भाई ने आप हसम भाई ना आपका नाम लिया। अच्छा जी, रवीश और राविशे, राविशे राविशे, चलो असल के आप लोग राविशे बोलते हैं ना, हम राविख राविख बोलते हैं अपने इधर पुश्तो में ना, ये पेशावरी लोग जो है ना, ये राविख शालका से राविशे ले, और ये वो बांस जो इधर हमारी भाड़ा इलाका है ना जमरोदल, राविशे बड़के नो ये है, जुबानों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि इधर पेशावर में जब आप जमरूद इलाके जाते हो ना, इतना दूर है नहीं हम पेशावर से, खैबर इलाके जाते हो ना, उधर भी जुबान जो है ना चेंज हो जाती है। इधर मेन पेशावर में ना लोग अक्सर ये जो खारी लोग है ना, हिंद को जुबान वाली लोग होते हैं ना, जब वो पुश्तो बोलते हैं ना, उसकी एक अलग अंदाज होते हैं। फिर जब आप चरसद्दे इलाके की तरफ जाते हो या मर्दान की साइड पे जाते हो ना, वो एक अलग पुश्तो होती है। तो ये होता है, ये मतलब जो है ना, ये असरात होते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ जुबान के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ जुबान होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। नुपदी की भी डीर जात फर्क फदी की मौजूद हुई जिगची पुख्तू के अगयो लिखवाली की कना सलूर मिले तकल मसलू की कशपग मिला दुता तब बदल जुबान मिलावेगी, यानी अल तब जुबान की चिकम दे परख हुई जित सलूर मिले लाल से नो तदव जुबान की परख महसूस की दुता भी खा। सलाम हसाम ब्रदर, आई एम गुलजमान खटक करक अली खेल से हूँ, दिलसोज यम खुदवा रहता कवा हसाम ब्रदर, अल्लाह दिजड़ा कहरा भाई बना मेरे से जरेट कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि कॉल, ये अल्लाह का क्यों शुक्र है जी, आप कॉल करें ना तो आपकी कॉल भी पिक हो जाएगी, आप टेंशन क्यों लेते हैं।

भाई सलाम क्यूट भाई जानी संग ये संग हालात ही वही चे क्यूट भाई जानी सलीम और वत संग ब्लेक है घना अच्छा ओए मोन तली कपले का वसा भाई जानी सलाम क्यूट वसीला जनत हिना से हरहान अफरीदी और सुंदर अमरा महनूर देवा महसूद जोनी खुशी खान और सरा खानी से लड़ता ऐमन था और सलमुना भाई ठूल होता ओके क्यूट भाई जानी कश्यप रामा करक ओके भाई ओके जी बाय बाय और भाई भाई ना करना प्रोग्राम में सरोवर भाई भाई जी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे पाकिस्तान के परचम में गहरा सबज रंग इस्लाम और मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है जबकि सफेद रंग पाकिस्तान में रहने वाले अकलियत और अमन की अलामत अच्छा है मुंतहा टांगे रकियो जहान मैंने जवाब दे रहा हूँ वही हबीब रहमान अरमानी वरासन हे लफराम बेचनी यार मेरा कीता पाती की गई लख मीरास में चितरबुर दबा दे छीना वाजी वाजी वाजी वाजी वही छी कल बख सच्चा के मैं से छी कल बख सच्चा के मैं गई फेरी दो तफास सड़े ओके जी वही सिफात कंपनी जिंदाबाद जिंदाबाद जी वही जे सवाल जवाब सबज रंग मुस्लिम के लिए अच्छा मुस्लिम अक्सरियत के लिए और सफेद रंग अकलियत के लिए जी यो जहान मनना है हबीब और रहमान अरमानी से अस्सलाम वालेकुम भाई सबज रंग मुस्लिम और सफेद रंग गैर मुस्लिम को जाहिर करता है और चांद और तरक्की और तारा रोशनी को जाहिर करता है आपकी बहन टांग से भाई रोशनी का मतलब है इलम है आपकी बहन टांग से ओके बहन आई नोम नदली कला यो जहान मानना भाई जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हो सब सिस्टर को मेरा सलाम आई एम क्रिकेट गर्ल अस्सलाम वालेकुम कैसे हो सब सिस्टर को मेरा सलाम ओके जी डबल रिपीट मैसेज भाई मेरा मैसेज रीड करो ना आई एम क्रिकेट गर्ल ओके रीड शो का नाम वही जी शो लाइव है आई एम क्रिकेट गर्ल जी बेमो इंशाल्लाह टोले शो जी देगा ना अगर लाइव विशा बेगम है और दाग वो बिल्कुल शक ना जाए ओ अल्लाह मुद्दा से इमरजेंसी हालात ने वो सोचती कि या हो ढेर मजबूरी भी है वो शो लाइव है तो सदी बचता नहीं कवल हाँ जरूरत नश्ता जी चोले शो में मौला इंशाल्लाह लाइव और भाई अच्छा पीर इसरार से वही छे ओ पीर इसरार ओ मतीउल्लाह से वो शेहगढ़ है जी छांग नहीं हो जहान मानना السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگھ ایک پروگرام تھی زبردست روان دی سوال جواب دے کرنا چھ شین رنگ چے دائیں مسلمانوں اور اسلام علامت دے اور سپین رنگ چے دائیں کنا اقلیتوں اور امن علامت دے چاند چی دا نوے زمانے اور ترکے ظاہروی اور سٹور چے دا روشنی یعنی علم رہنمائی چے دا ظاہروی ہم خوشی خان خٹک واہ جی واہ ماشاءاللہ ڈی زبردست جواب کمپلیٹ جواب भाई जी सलाम रासु भैया आई मीन आफरीदी भैया आनियन चैंपो में का नाम नन अमी न रोगोश्तला अमी में नन बजूर थे लोड़ा दुमास रोवड़ी बीवी या मोतो भी ऐसा भाई जी मीन आफरीदी माता हो खफा न लगे अच्छा परुन वाला मैसेज था खुदा से लगेगा लखा बीमार छे वे ना बीमार हो नया असे नन सवी आए السلام علیکم رازما مجانی سرنگ چالدا شاخو یہ کنا ریشا خٹک گیا ما شو دے آرام آواز دے او اچھا اوکے دای جو سلام میں ویر کے زینب وزیر تھا ہنا افریدی تا روشی خان تھا اینڈ علیا اور اگزی تھا او ٹول خاموش سر ہا سسٹر دے اور لسنر دے ٹول تا سپیشل سلامونا یہ خوش شعر ارتا ڈال لائک کو نو اور ریشا خٹک گیا ما

0: जल थो
1: के जी स्तर के तोरे का खजल बे पोरे का नन सोल बने तो से पैसे ही है कना आखा छे शादी छे तवे ता खोंदे या दा खता खोंदे तवे ता जोड़े या दा खते ता जोड़ी शाम
0: ओ गर समय दमय दम
1: टेस्टिंग रे सोल या ता जाओ बे से रोके जाओ ठीक ते कना काल मो खश मिलावा सेफर 332 96 10 329 अजी माशाल्लाह दी गई नंबर मने तो समय वेले हो दरी प्रोग्राम ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हम मौजूद है माशाल्लाह की मोमिना वालो व्हाट्सएप मने आगा दे सिफात सुम रहा प्रोडक्ट बारे के एड्रेस बारे के हां पछता नहीं कभी नो माशाल्लाह देर कोशिश में करे छे पठे मने में जाओ बेर करे रहा खुशाल बवी मुस्ता गोड़ू जी तो सीधा गस्तुन दे मसले छे दी आगा खात में

सर सर तो सर मैसेज मैंने यू नजर अच्छा वही अच्छा फेस वॉश यूज कर रही थी अच्छा वही का नाम आई एम क्रिकेट गर्ल सिफात काश्मीर पाकिस्तान फेस वॉश मो यूज कर रहे थे वही ची मो यूज कर रहे थे जी और सदी रोते वे लेने दी सख रोता हुआ फेस वॉश तो यूज कर रहे थे और सदी वह लेने दी जी सह हम हार होता हुआ

जनाब इसके सेंटी टाइम शो में जो जो जहाँ जहाँ में सुन रहा है टांक डेरा और पहाड़पुर में एक साथ तमाम गर्ल्स एंड बॉयज आजकल नाटी चाची चाची माम एंड मामी दादा दादी नानीज ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शवान का सलाम ढेर सारी मोहब्बतें ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सभी के नाम। सामने ग्राम कैसे हैं आप सभी लोग जनाब, उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैं भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चहचहाता हुआ फाइन एंड शाइन बिल्कुल जी, इस तरह मेरे चाहने वाले तमाम फ्रेंड्स तमाम दोस्त तमाम लिसनर तमाम यूजर तमाम के यूज बिल्कुल जी खैर वफियत के साथ होंगे और अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन को अख्तिताम की तरफ लेके जा रहे होंगे। जनाब टी टाइम में आप सबको ढेर सारा वेलकम है। हर रोज आप लोगों के साथ मौजूद रहता हूँ मैं टाक में रेडियो पैगाम के जरिए डेरा में ग्लोबल एफएम 91 की फ्रिक्वेंसी पर और पहाड़पुर में जी जनाब रेडियो 97.4 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर आज भी आप लोगों के साथ मौजूद है पूरा एक घंटा अब से लेकर ठीक 5 बजे तक। जी जनाब नया दिन है नई तारीख है बुध का दिन है 17 रबीउल्थानी है 30 सितंबर 2026 और असू की आज 15 तारीख है। जी जनाब एक दफा फिर से जनाब सर्दियां हमारी जिंदगी में आने वाली है जनाब। अच्छा मौसम ठंडा मौसम मीठा मौसम को वेलकम करने वाले हैं जनाब, जहां के अब पंखों की जरूरत जी बिल्कुल जरूरत तो अभी है लेकिन ना ही वो पसीना आ रहा है ना ही वो परेशानी हो रही है और ना ही वो गुस्सा आ रहा है क्योंकि जनाब गर्मी की हालत में जब लोड शेडिंग हो और जनाब क्या कहते हैं गर्मी भी जोर की हो तो गुस्सा खुद ब खुद आता है। तो जनाब गुस्सा जो होता है वो क्या कहता है अब उसके असरात आपकी स्किन के ऊपर भी होते हैं तो सर्दियों में लोग क्यों प्यारे हो जाते हैं जनाब गुस्सा कम आता है। हाँ जनाब हंसते रहते हैं मुस्कुराते रहते टेंशनें कम होती हैं और टेंशनें जी जनाब टेंशनें देने वाले भी लोग होते हैं और टेंशन लेने वाले भी लोग होते हैं। सामीने ग्राम एक छोटी सी बात है लेकिन उस छोटी सी बात के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है। कहते हैं कि अगर आप हमदर्द नहीं हैं

हम में से बहुत सारे लोग जो है सख्त मिजाज होते हैं, बद मिजाज होते हैं, उनको लोगों के ऊपर तरस नहीं आता, उनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं, ढेर सारी रकम होती है, अल्लाह ताला ने उसे उनको ढेर सारा अमीर बनाया होता है, लेकिन उन लोगों के अंदर हमदर्दी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो भाई समझ लो ऐसा शख्स जो है आने वाले कल के खैर से महरूम है। जो हमदर्द नहीं है वो नेक नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है जनाब, कितनी बड़ी बात है कि जो शख्स, जिस शख्स के अंदर हमदर्दी नहीं है किसी के लिए, वो सोच ले कि भाई उसका नाम नेकोकारों में से बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम जब अल्लाह के सामने लिया जाता है, जब लिस्ट बयान की जाती है लोगों की, तो उसमें जब नाम आता है तो उसका नाम हरगिज नेक लोगों में नहीं है। जो शख्स गुस्से वाला है, जो शख्स बदमिजाज है, जो बद इखलाक है, और जो किसी का हमदर्द नहीं है।

0: ही टू।
1: जी जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे और आज आते ही जनाब लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया। क्या मुझे बात करने नहीं देंगे जनाब? मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में तारीफ सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, या आप ये समझते हैं कि भाई अभी हमें हर चीज असबर हो गई है, पूरी केसन याद हो गई है, अब हमें जरूरत नहीं है खलील भाई से बातें सुनने की? कौन है हमारे साथ इतने बेकरार शख्स? जी जनाब, कॉल कट गई है उनकी और बार बार कॉल कर रहे थे। एनीहाउ जनाब, कॉल कर रहे हैं आप हमें तो सको कॉल कर सकते, वे सारा नंबर तुम्हारे को मौजूद है जनाब, 0344-9-36-33-6। जी जनाब, मैं सरायकी जी में को गाल करना बैठा कि जनाब मैं को पता लगे कि भाई टांग दी जेरे लोग सरायकी लोग इन ना भाई ओ केसन दे दीवाने बढ़ गए, क्योंकि उनको सरायकी दा प्रोग्राम सुनन को मिल रहे थे। टांग दे भी जितने सरायकी बेल्ट है जनाब ओ हुन केसन को यूज करन लग गई है। बिल्कुल जनाब, सारे सेलम ही सबको डिजाइन है पहन के जनाब, टांग दे विच कितने ज्यादा लोग जे रहे वो केसन को इस्तेमाल करने बन गए, तो आवन लड़ियां दे विच मजीद ही एक इस्तेमाल करे से ऐसा करा भी कौमियत दा या जुबान दा बिल्कुल जी नारा नहीं लाया अपने शो दे विच। सारे लोग, सारे इन सारे पाकिस्तानी, चाहे पंजाबी है, चाहे सरायकी है, चाहे पश्तो है, चाहे वजीर है, चाहे मसूद है, जेरे भी ट्राइब को ताल्लुक रखे ने, जेरे भी जुबान को ताल्लुक रखे ने, वो पाकिस्तानी ते केसन नेचुरल पाकिस्तान एक पाकिस्तानी कंपनी है जनाब, ते पाकिस्तानी कंपनी को सारे पाकिस्तानी

0: लोगों को पहले गुड्डा सीख रहे हैं ऐसा प्रिंटिंग का बड़ा टाइम लगता है वतन बाद फिलिंग होती है एलिमिनेशन होती है बहुत सारा सीलिंग होती है सील द प्रोसेस का बड़ा टाइम लगता है तो ऐसा पूरी कोशिश जीवे इंशाल्लाह हफ्ते इतवार ते सारे नए प्रोडक्ट पहुंचे ना उनके बाद पहला ऐसा प्रोजेक्ट इयो लाने पे महीने वाला ताकत प्लस इंशाल्लाह तो को देने जे तो सर रोजाना रज के खाओ
1: नहीं
0: दवाई दवाई वही गाल बहुत जायकेदार शह है मजा आवेदन
1: तो
0: लेकिन यकीन करो ये हूं जिम्मे मौसम चेंज थी है ते लोग गर्म दूध पीवन लग गए तो मजीद ही मजा आंदा पिए ते मजीद ही रिजल्ट ते मजीद ही जड़ी बूटियां जड़े घुल के उन्दे भी तुहाडे अंदर पहुंच दें ते ताकत पहले को भी ज्यादा तो आपको हुन ताकत मिलती पे सी तो वदा बैग एक महीने मिल्की साबण ही तुसा गिन छोड़ा कि लगे तो सारा मिल्की साबण इस्तेमाल अच्छा तू ना पूछिए सा कुछ है ना कि लगे नहीं गिरना क्योंकि सर्दियों के सही जितने भी साबण मौजूद हैं तुहाडे मुंह को खुश करने दिन जेले तुसा धोंदे वे अगर तुसा अपने मुंह को खुश्क नहीं वे करना चाहते तुसा आदे वे कि साबण धोण के बाद तुहाडा मुंह फटे नहीं तो केसन का साबण इस्तेमाल करो मिल्की साबण जेहड़ा दूध को बड़ा हुआ है तो यकीन करो तुहाडे को लोशन वोशन की जरूरत न पोसी बिल्कुल केसन के साबण अंदर सील उत्ते डब्बा वत सील यानी कि है जी आम साबण तो एक रैपर आंदे तो खोल के भाई केसन साबण इस्तेमाल करो तो को पता लगे कि कितने प्रोटोकॉल नाल असा तो को साबण पेश करने हैं अच्छा जी वाह बात तो बड़ी वड़ी गाल है सही कि घर पहुंच गए
1: घर दे दिए थे दुकान तो पैसे गिन के लगा गए थे गीत आई पाई नहीं तो चाह रहे तो दुकान तो पैसे में गिन लिया
0: अच्छा चलो ठीक हो गया कारी साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया ऐसा नल थके हुए तुसा
1: अल्लाह खैर दे अल्लाह पाक को
0: पहाड़पुर को जनाब हसनैन अली शहजाद सर हाजरी लाओ तुसा दी याद आंदी पई है अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर हसनैन हमारे साथ हो कहते हैं कि तुम्हारी याद आंदी पई है ता याद आंदी पई तू आ गए वे सनन हाफिज तहसीन तुरा भी आदे पर माशाल्लाह खलील भाई आप बहुत मीठे हो अच्छा जी वाह जी वाह अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: अंकल जी पकड़ लिया हमें आपने आज स्पीड के अंदर कि नहीं स्पीड लगाई आपने भी कि आसानी से पकड़ लिया ये बताएं
2: आसानी से पकड़ जाता यार
0: अच्छा आसानी से पकड़ लिया कैसे हैं मोहतरम ठीक है आप खैरियत से हैं
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: सुन रहे हैं आप
2: प्रोग्राम तो सुन रहे हैं जब तेरे में इतना करंट है तो हमने भी करना चाहिए ना करंट
0: हाँ करंट करंट हो मैग्नेटिस मैग्नेटिक पावर हो तो बंदा खींच के आता है ना फिर ऐसे थोड़ी आता है मैंने भी मैग्नेटिस अपने साथ रखा हुआ है
2: हमने तार रखा हुआ है
0: तो फौरन बंदे को खींच लेते हैं आप जनाब क्या कहेंगे मौसम अच्छा है आपकी तरफ
2: माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे भी और मुंह भी और हाथ भी और पांव भी अच्छे और बाल भी अच्छे
0: माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा भी अच्छा क्योंकि जनाब केसन का साबुन केसन का फेस वॉश केसन की क्रीमें हाथ पांव भी अच्छे बाल भी अच्छे क्योंकि जनाब केसन जो है ना वो रुक्स जुल्फ और रुखसार की कहानी है क्या कहते हैं हम केसन है
2: अब एक सुरमा निकालो आंखों का भी
0: हाँ सुरमा निकालें और बहुत सारी चीजें हमें पहली चीजें पूरी नहीं होती हमसे ठीक है जनाब अब कहते हैं कि नई चीजें बनाओ तो अभी जो है ना वो हमने थोड़ी सी ब्रेक लगानी है ताकि आप लोगों के लिए जितनी प्रोडक्ट बना लिए ना उनके अंदर कमी भी ना आए ना हर चीज फरावानी में आपको इंशाल्लाह मिलती रहे तरीके तरह से दरिया बनता है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रहमत है, फजल है, और ये रहमत और फजल यूं ही जारी रहा तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। नेक नियति हो, जो कहते हैं ना कि जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो लोग धोखा नहीं देते, उनको कामयाब होने में थोड़ा वक्त लगता जरूर है, ठीक है ना, लेकिन एक दिन उनकी बादशाही होती है, एक दिन उनकी हुक्मरानी होती है।
2: नहीं, कामयाब ही कामयाब है खलील भाई, इंशाल्लाह है।
0: बहुत शुक्रिया आपका अंकल, हमारे साथ मौजूद थे आप। जी जनाब, केसन केसन है, और सभी लोग हम आप भी हमें कॉल कर रहे हैं, आप लोगों के एसएमएस भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आप लोगों के कॉल्स भी हम ले रहे हैं साथ साथ में, और अब थोड़ा सा सांस अगर ले लें तो आपकी मेहरबानी ताकि मैं आपको बता दूं भी केसन के प्रोडक्ट आपके इलाके में मिलते कहाँ हैं। जी एक और कॉलर है, चलो जी इनको मौका देते हैं, फिर उसके बाद एसएमएस की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची
3: मोहब्बत खलील भाई कारी कशीन जफराबाद से हैवी वेरी एंड जनरल शोर से।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, आज तो फिर तो आप हक, मैंने अनाउंस किया था कि कारी साहब की कॉल अगर लग जाती है तो इनाम है मेरी तरफ से, गिफ्ट है भाई।
3: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सुनाओ खैरियत से?
0: बिल्कुल करम है अल्लाह का। मैं आज कोशिश कर रहा था कि भाई चले जी जफराबाद वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं, और ये आपका अपना दुकानदार हाजी जरी जनरल स्टोर हाफिज तहसीलकारी तहसीन तुराबी हमारे साथ आ चुके हैं। हाफिज साहब क्या कहेंगे भाई, कितनी मोहब्बत करते हैं जफराबाद वाले केसन कंपनी से?
3: माशाल्लाह बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगाए जो हमें कितना माल हासिल आता है। अभी भी तकरीबन इसका ज्यादा कस्टमर आ रहा है कि केसन के ये क्या ना है, ताकत का खजाना नहीं,
0: हाँ ताकत प्लस,
3: हाँ ताकत प्लस, ताकत का खजाना, उसका बड़ा साइज वाले अगर खलील भाई बना हुआ है तो उसका कस्टमर ज्यादा आ रहा है, उसका बोल रहा है कि वो अगर मौजूद है तो दे दो, लेकिन हमारे साथ एक पीस भी नहीं है बड़ी।
0: हाँ बड़ी पैकिंग अभी हमने बस अनाउंस भी नहीं की, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि बड़ी चीज मिल जाए, तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश में है। आज है बुध वाला दिन, तो मेरी कोशिश होगी कि अगले बुध तक इंशाल्लाह बड़ा पैक इसका आ जाए।
3: बस अल्लाह करे, अभी अभी भी कस्टमर एक साथ खड़ा था, मैंने कहा सबर कर शायद खलील भाई का नंबर लग जाए, तो जिस बंदे ने भी एक बार लिया है तो वो दूसरा बार जो आता है एक की जगह वो दो या तीन लेकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यूटी केसन एक इतिमाद का नाम है, हमने खुद, मैंने तकरीबन डॉक्टर जैन इश्मा ये हुमेरा वगैरह संस लेग शोल्डर तकरीबन सब किस्म के कंपनी का ये शैम्पू वगैरह यूज किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केसन शैम्पू और तेल का जो रिजल्ट मुझे मिला है वो मुझे पता है और अल्लाह को पता है।
0: जी ये देखिए, ये आप हमारे ये कस्टमर तो कस्टमर हैं, ये दुकानदार हैं हाफिज तहसीन, और ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने इस्तेमाल किए शैम्पू को भी, हर चीज को भी, और धड़ाधड़ हमारा हाजमा सिरप भी आपके पास है, ताकत प्लस और वेट कम पेट कम।
3: हाजमा सिरप तो मैं अमी को डॉक्टर निसार बिठनी के पास गए, लेकिन ये खान में उससे बेहतरीन डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसके साथ भी उनका इलाज तकरीबन कन्फर्म नहीं हुए, इस सीरम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। सीरम की कीमत भी 150 रुपए है सिर्फ, ना डॉक्टर का फीस ना कोई फीस।
0: हाँ असल चीज ये है भाई, ये विदाउट कमीशन वाली प्रोडक्ट है, और आपके फैक्ट्री से डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है, और 150 रुपए में आपको, और वेट कम पेट कम भी आपके पास जा रही थी, परफ्यूम भी आपके पास गए हैं भाई। हाई जी जरी के ऊपर केसन की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका कस्टमर ना हो, ऐसा है
3: ऐसी भाई? कल एक कस्टमर को मैं तकरीबन ये जानान वाले 6,500 वाले स्प्रे भी दिखाए, तकरीबन दूसरा बहुत कीमती कीमती स्प्रे दिखाए, लेकिन उनको ये आपका वो मर्द वाला स्प्रे का नाम क्या था,
0: अकबर परफ्यूम
3: अकबर, लेकिन 6,500 वाला स्प्रे को उसने बायकॉट किया, लेकिन अकबर स्प्रे उसको बहुत ही पसंद आया, उसने कहा कि मैंने एक बार अलग यूज किया था लेकिन मुझे यही चाहिए।
0: तो कम कीमत के अंदर भाई वो कंपनी जो आपका इतना ढेर सारा
3: का 6,500 इस तरह कोई तकरीबन अलीशा वगैरह पड़ा है हमारे साथ, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली पड़ा है, लेकिन उसने बोला है कि तब यूज किए लेकिन
4: अकबर एक पहचान है, अकबर एक बहुत उम्दा चीज है, लेकिन आपने 8 घंटे का बोला था, उसने कहा तकरीबन 14 तक उसका लास्टिंग जा रहा है।
0: 14 घंटे तक भाई परफ्यूम हमारा चलता है ये लोग बता रहे हैं। तो तहसीन भाई ओवरऑल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त केसन को एक बहुत एतमाद हासिल है आपके जफराबाद में, और कस्टमर भी आपके पास बेतहाशा है, और बहुत ज्यादा सेल बढ़ गई है, तो गलत तो नहीं होगा?
4: नहीं नहीं माशाल्लाह, अगर कोई एक चीज भी ट्राई करे, कम से कम ये सिर्फ है या एक साबुन ही, उससे स्टार्ट करे, फिर उसको केसन कंपनी का तकरीबन पता लगेगा कि इस छोटे में इतना जबरदस्त रिजल्ट और बड़ों का क्या हाल होगा। तकरीबन ये ताकत प्लस अभी आपने 2-3 दर्जन या तक 4 दर्जन, अभी हमारे पास 3-4 पीस पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 दिन में तकरीबन दर्जनों के हिसाब से। हमारे ये शॉप है भी नया, खरोटी प्लाजे के बिल्कुल सामने जो दुकान है, ये है भी नया हमारा,
0: बिल्कुल। अच्छा तहसीन भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पास तो सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आपके पास साथ के साथ हमारे साबुन भी मौजूद है किसी कंपनी के, मुझे बताइएगा क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसकी इतनी बड़ी वैरायटी हो, वो भी साबुन के अंदर?
4: यार मैंने आपको क्या बोला है कि सिर्फ से लेकर अकबर स्प्रे तक तकरीबन आज तक हमको बहुत ज्यादा क्लेम आए एमसी वगैरह का, लेकिन आज तक किसी ने भी एक क्लेम को तुदूर के बाद एक शिकायत भी नहीं की है, ना साबुन का, ना तेल का, ना क्रीम का, और बड़ी खबर जफरानी क्रीम का। अभी मैं एक दूसरा कस्टमर का आवाज सुन रहा था, उसने कहा है कि मुझे मीठा भी करे और मुझे सफेद भी करे, इंशाल्लाह उसको यही गारंटी के साथ मैं दूंगा, अगर उसको घर में इज्जत ना मिले तो ये क्रीम का टेस्ट है और इसका
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हाजी जन्नत स्टोर है जनाब जफराबाद में, और ये ओनर है वहाँ पर, इनके बड़े भाई और ये भी होते हैं, और माशाल्लाह और बेहतरीन तरीके से आप लोग खरीद रहे हैं, तभी ये भी और अपनी तरफ से ये अपने कस्टमर को एतमाद देते हैं, अगर कोई एफएम वाला नहीं होता तो उसको भी बताते हैं भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तहसीन भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका,
4: शुक्रिया
0: थैंक यू सो वेरी मच जी। कारी तहसीन तुराबी हमारे साथ जफराबाद से, और भाई बहुत बड़ी शॉप है इनकी जफराबाद में, और बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं जफराबाद वाले केसन को, जैसे कि इतनी कंपनियों को उन्होंने नाम उठाया, और वो कहते हैं कि इतनी कंपनियों की कंप्लेंट्स होती हैं हमारे पास, लेकिन केसन की 0% कंप्लेंट है, 0% कभी किसी ने पैक उठा के नहीं लाया कोई कि भाई ये चीज हमने खरीदी इसका रिजल्ट नहीं मिला, ये बेहतर नहीं थी। तो आप तो, हम आपको यूं ही मयार क्वालिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन मौजूद हैं?
5: ताहिर फारूक।
0: ताहिर फारूक भाई क्या हाल है? ताहिर फारूक भाई चंगे वदे वे तुसां ठीक ठाक?
5: शुक्र है फर्स्ट क्लास।
0: तुसां अपने आप तुसां अपने दुकान ते सारा ताकत प्लस कदर मंगवे सो?
5: मैं आई हुए नंबर सही से नजर आ रही नंबर पर बांध भाई।
0: हां बस वो नंबर मेरा पर्सनल तौर को अगर हो गया तो ओ चंगा रहा वे, ए नंबर तो को घट बात मिल सी
5: फिर मैं खुद अपने वक्त मंगवाने आ
0: जी।
5: अच्छा।
0: आजकल तो अपना चक्कर नहीं लगता इनते, मेरा ख्याल है बाजार दो ऑपरेशन तो सकता है थी। अच्छा चलो चलो तुम शो के बाद रबता कर गी ना इंशाल्लाह, जैसे जैसे जरूरत हो सबको दस दे इंशाल्लाह तो सप्लीमेंट है
5: शिफा
0: दर्द की शिफाय दर्द को इस्तेमाल किया था कि फर्क है? अच्छा दूर ही होना था इस्तेमाल होता है, कोई लंबे अरसे तक तो इस्तेमाल करो को, कोई हफ्ता का
5: नहीं, मतलब मसला
0: खत्म माशाल्लाह डूटिया नहीं, तुरा कमर दर्द खत्म थी गया से छोड़ देते घर रखी पे हूं पिया उसी घर तुरे को बस क्या मेरे जरूरत थी तुम थोड़ी मालिश कर छोड़ी करो फौरन देखो दूधिया दी तुरा मसला खत्म है जी, कोई गोलियां खाओ हफ्ता हफ्ता खाओ आंदे पेट ही खराब गुर्दे भी खराब मसाना भी खराब है जी, तेल लाओ दूधिया पुराने को पुराना दर्द खत्म ठीक है क्या ताहिर फरूक भाई, बहुत मेहरबानी शुक्रिया नवाजे जी। जना भाई कह रहे थे कि दो दिन के बाद इनको जरूरत ही नहीं पड़ी है, इनके कमर का दर्द जो है खत्म हो गया। 2 दिन आप अगर टेबलेट लें, डॉक्टर के पास जाएं, 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट लिखी जाएगी, तब जाके आपका जो है कमर का दर्द या पुराने दर्द खत्म होते हैं। भाई कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन लगाया, ये दुकानदार हैं भाई, ठीक है जना, 2 दिन कहते हैं मैंने लगाया और उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है, दर्द गया, कहाँ कहाँ का दर्द था, कहाँ पर था, खत्म हो गया। तो जनाब ऐसे ही मैजिकल प्रोडक्ट है केसन की, ठीक है जनाब, मैजिकल प्रोडक्ट। अभी ये शिफायत दर्द जो है ना शायद कहीं मिल रहा हो लेकिन हमारे पास शॉर्ट है, क्योंकि इसका एक इंग्रेडिएंट शॉर्ट है, वो नहीं आ रहा, ठीक है जनाब। विंटर ग्रीन इसके अंदर ऐड होता है, वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग लैब में नहीं है वो, उसके लिए ऑर्डर किया हुआ है हमने, टाइम लग जाता है बाजू का, तो अभी नहीं है। लेकिन हम तब तक कोई चीज आप तक नहीं पहुंचाते हैं भाई जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कोई भी चीज कम और रोक देते हैं, स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं, नहीं देते हैं मार्केट में, 100 लोग मांगते रहे, जब तक हमारी तरफ से मुकम्मल चीज, मुकम्मल फार्मूला नहीं होगा आप तक नहीं पहुंचेगा। सो आप भी इस्तेमाल कीजिए केसन की प्रोडक्ट, स्पेशली ताकत प्लस तो भाई छाई हुई है हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह, और आप यकीन करेंगे टांग वालों, कल आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें 1 लाख का ऑर्डर भेजा है ताकत प्लस का सिरप, यानी कि इतने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं टांग के अंदर। और ये जो तहसीन भाई कह रहे थे भाई, जो भी एक दफा लेके जाता है ताकत प्लस, फिर अगली दफा वो 2-3 लेके जाता है, क्योंकि इसका एक दूध का गिलास जब आप बना के पियेंगे ना, वो एक ही गिलास भी आपको बताता है कि भाई इसके अंदर क्या था, इसने वाकई ताकत दी है या नहीं दी है। मैसेजेस में अस्सलाम वालेकुम, आई एम जखड़, न्यू लिसनर, प्रोग्राम सुनने वालों को सलाम। ये भी कोई नाम है यार, कोई इंसानों वाला नाम तो रखो, वो कल दुर्योधन वाली बात हो गई ना, हाँ मैं शेर वाली जो बात सुना रही थी। सलाम शो इज वेरी नाइस, अनोन फ्रॉम टांग, टांग से गुमनाम हमारे साथ है, गुमनाम भाई नाम तो होना चाहिए हर किसी का, और अपना नाम अच्छा लगता है। अच्छा ये कहते हैं कि जनाब मुंह पे दाग हैं, कौन सी क्रीम लगाएं, केसन दुकान से मिलेगी, कहाँ है केसन की दुकान, ठीक है जनाब। और प्लीज ये जरूर बताना, मैं हर वक्त कॉल करता हूँ, आप मसरूफ होते हैं, आप मसरूफ होते हैं, आप हर वक्त कॉल करते हैं और आप हम मसरूफ होते हैं। मुंह के ऊपर दाग हैं, क्रीम लगाएंगे जाहिर बात है, वैसे अगर रेगुलर साबुन इस्तेमाल करें या फेस वॉश इस्तेमाल करें तो भी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, जैसे हमारा लवली फेस वॉश है, जैसे हमारा मिल्की साबुन है, ग्लूटा वाइट साबुन है, ये साबुन भी जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वक्त के साथ ये आपके दाग धब्बे खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते हैं, वो कहते हैं 7-10 दिन के अंदर मेरे दाग धब्बे खत्म हो जाए, तो फिर जो होता है ऑप्शन आपके पास क्रीम का होता है, केसन की क्रीमें जो मौजूद है आपके पास, जैसे कि केसन ग्लूटा वाइट क्रीम है, केसन जाफरानी क्रीम है, आप इन क्रीमों का इस्तेमाल करें, दाग धब्बों को खत्म करती हैं, ठीक है जनाब। अच्छा जी हमारे साथ जो है वेव भाई हैं एंड रोज मसी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, वेलकम करते हैं उनको अपने प्रोग्राम में जनाब, प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और टांग के अंदर आपको प्रोडक्ट हमारी कहाँ मिलती हैं, ये ताकत प्लस कहाँ मिलेगा, ये शिफाय दर्द कहाँ मिलेगा, जो 2 दिन के अंदर पुराने से पुराना जनाब जो है वो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, रिंगड़वा का दर्द, अर्कुन निसा का दर्द खत्म कर देता है। आप शायद जो नए लोग सुन रहे होंगे वो समझते होंगे कि आम सा तेल है जड़ी बूटियों वाला, तो भाई आपकी सोच गलत है, ये कोई आम तेल नहीं है, ये 700 रुपए का तेल है, ये कदरे महंगा तेल है, ये शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किया गया तेल है, और ये खूबी हासिल है शुतुरमुर्ग के तेल को कि वो जो शुतुरमुर्ग का तेल होता है, जो इंसान के जिस्म के अंदर तेल होता है, वो आपस में मुमासलत रखते हैं। ये वजह है कि जब आप इस तेल को जिस्म के ऊपर लगाते होंगे तो ये फौरी तौर पर अपने दोस्त से जाके मिलता है, यानी कि इंसानी तेल के साथ जाके फौरन जज्ब हो जाता है, और यही वजह है कि आपका दर्द फौरन से खत्म हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो बहुत अरसे से गोलियां खा रहे हैं, आप यकीन कीजिए उनकी उनकी जो गोलियां हैं, उनकी जो टैबलेट है, उनकी जो मेडिसिन है, वो या तो आधी रह जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उसके जोड़ों का दर्द है, अच्छा पहले तो एक हमारे पास ताकत शिफाय दर्द था, अब तो ताकत प्लस आ गया है, ये दोनों चीजें अपने बुजुर्गों को गिफ्ट करें, ٹھیک ہے جناب. طاقت پلس روزانہ کا استعمال جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا, سفید تیل کو شامل کیا گیا ہے طاقت پلس کے اندر, جو دودھ سے کئی گنا زیادہ اپنے اندر کیلشیم رکھتا ہے. سفید تیل, سفید تیل کے اندر دودھ سے کئی گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے, اور یہی کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہی کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے ہڈیوں کا بھربرا پن ختم ہوتا ہے, آپ کے ہڈیوں کی کمزوری ختم ہوتی ہے, اور جب یہ کمزوریاں ختم ہوتی ہیں تو پھر بندہ ایزیلی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, ایزیلی خود ہی صوفے سے اٹھ سکتا ہے, چارپائی سے اٹھ سکتا ہے, بیڈ سے اٹھ سکتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا ایزی ہو جاتا ہے جب آپ طاقت پلس کو استعمال کریں گے یا آپ شفا درد کو بیرونی طور پر استعمال کریں گے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسے بزرگ ہیں تو ان کی جان چھڑوائیے میڈیسن سے. ٹھیک ہے جناب, جو پین کلر ٹیبلٹ ہوتی ہیں, جو مسل ریلیکسن ٹیبلٹس ہوتی ہیں, وہ یوں سمجھیے کہ معدے کی بھی بربادی ہیں, جگر کے بھی, گردوں کی بھی, اور لانگ ٹرم میں تو بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں. اگر ایک ہفتے کے لیے یا دس دن کے لیے کوئی پین کلر کھاتا ہے تو کوئی اتنا افیکٹ نہیں آتا, لیکن اگر ایک بندہ ریگولر کھا رہا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے تو پھر بھائی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ٹھیک ہے جناب, وہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو جناب ٹانگ کے اندر صدام پلازا یعنی کہ رمضان مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر منصور جنرل سٹور ہے, وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وحید جنرل سٹور ہے البدر مارکیٹ کے سامنے, مدینہ جنرل سٹور ہے صدر پلازا کی بیسمنٹ کے اندر, فہیم جنرل سٹور ہے البدر مارکیٹ میں, اور غلام جان جنرل سٹور ہے ٹریفک پولیس کے ساتھ ہی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دکانیں ہیں جہاں پر آپ کو, یہ ٹانگ کی بات کروں, ظفر آباد میں حاجی زری کے پاس آپ کو سارے پروڈکٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اس کے علاوہ مولانا علاؤدین صاحب کے مدرسے کے بالکل سامنے ہیں جناب زبیر بھائی ہوتے ہیں, اور خان کاسمیٹک آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بنو چنگی پر ہیں تو کراچی کاسمیٹک والے سے لے سکتے ہیں. ڈیر اسمل خان میں شیو سے وڈا کے اوپر زائد شاپنگ سینٹر, اور اس کے ساتھ دربار والی گلی میں عمر جنرل سٹور ہے جناب, وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. گلشن کیش اینڈ کیری آپ لے سکتے ہیں. کیسن شاپ ہماری موجود ہے اکبر پلازا کے اندر, اور اکبر پلازا جو ہے میاں کمرشل مارکیٹ کے پیچھے ہے. لوگ دھڑا دھڑ ایک ہماری آفر لے رہے ہیں, ہم نے آپ لوگوں کے لیے 5000 کا ایک انعام رکھا ہے. جو لوگ کیسن شاپ سے خریداری کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے, اور 1000 کی خریداری کے اوپر ایک کوپن ہے. السلام علیکم سر, مائی سیلف کے یو حیا خان, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں سنائیں. سر جی آج باقی سب چھوڑیں, آج آپ کے شو کی گولڈن لسنر سویٹ درے ادن کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں. اتنے عرصے سے آپ کی لسنر اور یوزر ہیں, ان کے حق میں کیا بولیں گے پلیز ضرور بتائیں. اچھا میں ان کی غیر موجودگی میں اس دن کچھ لسنر ہماری آئی تھی کیسن شاپ کے اوپر نا, تو میں نے ایک سرٹیفکیٹ درے ادن کو دیا ہے, اور وہ وفا کا سرٹیفکیٹ دیا. میں نے کہا درے ادن میری وہ یوزر لسنر ہیں کہ میں کسی بھی ایف ایم کے اوپر ہوں, رات کو پروگرام کر رہا ہوں, دن کو کر رہا ہوں, دوپہر کو کر رہا ہوں, درے ادن کی حاضری یقینی ہوتی ہے. میں نام لے رہا تھا, ہمارا ایک بہت بڑا گروپ تھا فیمیلز کا, 15-20 لڑکیاں ہوتی تھیں ایک وقت میں ہمارے شو کے اندر, بہت شغل بھی ہوتا تھا, اور وہ اب ساری غائب ہو گئی ہیں. لیکن درے ادن کو تو میں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ تو سو ہے, لیکن وفا کا سرٹیفکیٹ ان کی غیر موجودگی میں دیا ہے, اور وہ فیمیل جو آئی ہوئی تھی وہ ناراض بھی ہو گئی کہ اچھا جی ہم وفادار نہیں ہیں, اور درے ادن تو میں نے کہا درے ادن نے تو پروف کیا ہے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل آپ سے ملاقات کریں گے, کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کہا.

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बाबा चिदाज लपाश मालब मोटरसाइकिल अखले
3: ना बचे ना स्टा उमर लाद मोटरसाइकिल ले चला वो न दे कला चितलोशी उमर दीदा तल्लो सुकालुशी लाइसेंस ची जूड़शी ब्या बदल अखले मा बचे
2: बाबा नु अखेर वली उस रात वाले ना अखले
3: गोरा बचे देर दासी खलक थी ची बे लाइसेंस गाड़ी चलाई कम ची देर द खतरे सबब गर्जी
4: दा पैगाम तासो दो लसी खेर खेगड़े लपारा दो रेडियो अमल लफा वावरे दो

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: आपको कड़वा महसूस होगा कि चाय कड़वी है। अब उस कड़वाहट को जायके मुंह को बदलने के लिए या कह लें कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए हम लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते
1: हैं। ऐसी बात है,
0: तो वो दूध चाय, दूध वाली चाय होगी,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: हालांकि अगर चाय का मकसद लें जो तिब कहती है तो वो यही है कि आप पानी को उबालें, उसमें पत्ती का रस निकालें और उसको बाद में आप छाने, मजीद थोड़ा अगर पकाना चाहें तो उसको बेशक पका लें, उसके बाद आप उसे छान के कपों में निकाल के और आप कप के तौर पर इस्तेमाल करें,
1: ठीक है,
0: आप उसका जायका ही सबसे अलग महसूस करें।
1: अच्छा हकीम साहब, आपने बात की है कावे के हवाले से कि ये जिस्म के अंदर जाना गर्मी बढ़ाता है,
0: काली पत्ती का।
1: काली पत्ती
0: बिल्कुल
1: का। तो सर्दियों में यानी कि सख्त सर्दियों में पीना कैसा है, या हमारे वो बहने वो भाई जो यहाँ से वजीरिस्तान में रहते हैं जहाँ पर मौसम अक्सर ठंडा ही रहता है, तो वहाँ पर ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
0: ये बताइए। देखें कावा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, हम खाली काली पत्ती का नहीं पीते, सबस कावा, सबस पत्ती का भी कावा चलता है, लेमन ग्रास हो या बेशुमार है। चीज ये है कि आप इसको उस तरह तैयार करें जिस तरह के उसका तैयार करने का हक है,
1: ठीक है,
0: और जो उसका जेन्युइन तरीका है जो आपके जिस्म में गर्मी खुश्की नहीं देता बल्कि आपको एक सरूर सा भी देता है,
1: हाँ जी,
0: वो यही है कि आप पहले पानी को उबाल लें,
1: ठीक है,
0: उसके बाद उसमें थोड़ी पत्ती डालें और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखें ताकि पत्ती का जो रस है सारा जौहर जो है वो पानी में शामिल हो जाए,
1: ठीक हो गया।
0: बाद में आप उस पानी को छान के उस पानी को दोबारा थोड़ा पका लें, फिर आप उसमें हसबे जायका अपना मीठा डालना चाहते हैं तो आप डालें, लेकिन कोशिश करें कि आप चीनी की बजाय गुड़ या शक्कर ये इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेस्ट है।
1: चलें ठीक है,
0: ठीक है। उसके बाद जब आप उसका घूंट भरेंगे तो वो आपको कावा जो है वो अलग ही लज्जत देगा,
1: ऐसी बात है।
0: फिर अगर आप चाहें तो आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन जो चाय है चाय का मकसद है बगैर दूध के, लेकिन वो एक सरूर, एक नशा और एक ताकत दे,
1: ठीक है।
0: बाकी बात हो रही थी मुरंगा
1: की, मुरंगा की,
0: ठीक है। तो आखिर अब बाजे पूछते हैं कि यार इसके जो पत्ते आप खुशक करके पाउडर बनाते हैं, कैप्सूल गोलियां बनाते हैं, क्योंकि मेरे दवाखाने में भी मोरिंगा से बने हुए जो है फार्मूले मौजूद हैं, मेरे अपना नुस्खे बने हुए हैं इसके मोरिंगा के, जो कि स्पेशली मैं दर्द के मरीजों को इस्तेमाल भी कराता हूँ।
1: अच्छा, मोरिंगा के फार्मूला आपके पास, मतलब के बने हुए?
0: हाँ, मोरिंगा का जो है जुज है, जौहर है इसका, उसके जरिए ये इसकी दवाई बनी हुई है जो मैं दर्दों के मरीजों को इस्तेमाल कराता हूँ,
1: ठीक है।
0: क्योंकि किसी जमाने में हम लाहौर शहर में तो खैर आम सुहांजने का साग मिलता है,
1: ठीक है,
0: पकाते हैं, तो जब घर पकाया जाता था तो इसका जो पानी उबालते थे साग उसमें, तो वो जो पानी था वो जाया नहीं होने देते,
1: अच्छा ठीक है,
0: हम उसी को गोलियां बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे बजाय के कुछ सादा पानी ले,
1: ठीक है।
0: वो मोरिंगा का पानी, उसमें दवाई डाली, जड़ी बूटियां जो दूसरी हैं, इसमें अश्वगंध है, इसमें बेशुमार आ जाती, उसको डाल के फिर हमने उसकी गोलियां बना ली,
1: ठीक है,
0: हाथ से, और वो काम करती थी। उसी फार्मूले को जहन में रख के अब ये है कि अब जिद्दत आ गई है,
1: हाँ ये तो है, जिद्दत आ गई, ऐसी बात है।
0: पत्ते खुशक करते हैं, उसके बाद आप इसको पाउडर बनवा लेते हैं,
1: ठीक है,
0: फिर आप चाहें तो आप दाइयों के जरिए गोलियां बनवा लें और वो गोलियां फिर यानी कम वक्त में ज्यादा बन जाती हैं,
1: ऐसी बात है।
0: उस तरह आप हाथ लेके बैठे रहेंगे, एक एक गोली बनाएंगे। अब ये है कि उसको देखना यह है कि ये काम करती है, बिल्कुल काम करती है। इसको मैंने अपने दवाखाने में बल्कि यहाँ अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी इसको इस्तेमाल कराया, दर्दों में बेहतरीन साबित हुई है। दर्दों के साथ साथ ये मैदे के मामले में, ये असाबी कमजोरी में,
1: हाँ जी,
0: ये आयरन की कमी में, यानी ये एक ऐसा कुदरत ने एक पौधा पैदा किया है कि जो आपकी पूरी बॉडी के लिए एक जनरल टॉनिक है।
1: जनरल टॉनिक, ऐसी बात,
0: जनरल टॉनिक के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इसमें खौफ खतर नहीं है, आप इसको छोटे को देते हैं, बड़े को देते हैं, बस उसकी मिकदार देखनी होती है,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: दूसरा ये है कि ये जिस्मानी कमजोरी में भी बेहतरीन है, बाजे दुबले पतले कमजोर होते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ रीजन जानना होता है कि यार इसकी कमजोरी की वजूहत क्या है, तो
1: उसके
0: मैदे की भी सलाह करें,
1: ऐसी बात है,
0: उसकी खुराक भी ठीक करें अगर खुराक कम है, और अगर उसे कोई पोशीदा मर्ज है तो फिर उसका भी पता चला के और उसका इलाज करें,
1: ऐसी बात,
0: तो फिर इंशाल्लाह उसके वजूद में ताकत भी आएगी, उसके पट्ठों में भी ताकत आएगी,
1: ठीक है।